0: 수진행의 현적 강단들이나 위기의 자꾸도 녀트로는
1: 지지지
0: 근데 위기의 챈들까지 보는 돈치저르시 감물도면서 치다고 다 짐슨 치들으면서 보는
1: 빨리
0: 녀트로기 콩가 소소의 차 어떻게 먼저 이 차치가 나라 어떻게지가 이 차치가 있는 게 나라 어떻게지가 이 차 망하여 지난다 다 그 집지가 돈치대 저기 감물이 나라 다 파 럭스기나 파치 이 차치 그래 동의지 хатамуйон тамзы татарнга ёнызга ойгыча
1: да
0: продукт тарастыдона манжерита пача чэни калдырычэрита тамзыры тонгунга ичанда чи чани да жачагы гыпчэда нотынги чарму
1: ажи
0: нотынги чарита ачу жачагы гыпчэрасыгы да жачагы гыпчэ конгасыгы партыр нотынги чах чоуры да ти шетчэ да ти жачагы гыпчэ тамауды да да ачу гыпчэн чыгы чарысыгы да лордира хонжэ тамыктунда гыпчэ чатырму
1: ажи
0: अबगु बेयुशना सो तानिना सो कचिनदे गच कुजगुनो कोंजे मचु कोतिचा अमचु कोतिचा छु कोइदन जुगु दिना छु ता थामा ता चाजियुने को नोख तां खतां बिन दोस्तावन चितिशि खितिशिमि शेमा माला तां बिन दोस्ताव आ सबि मा खचिम बोताव सिरु जिया तां दमुग मचु गो योंदिस खचामंगा त्यानि ता कपते थंग जारबनि सराब जोनो थंग ग मचु गो तांचि मंगा जो खेंजोने कोंजेला छि ᱛᱮᱞᱤ ᱞᱟᱱᱛᱟ ᱯᱟᱛᱟᱣ ᱛᱮᱜᱚᱝ ᱜᱚᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱨᱵᱞᱟ ᱡᱚᱜ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱚᱱᱫᱚᱢᱚ ᱛᱟᱝᱡᱟᱨᱩ ᱠᱟ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱥᱟᱨᱟᱵ ᱡᱚᱱᱮᱭᱚ ᱛᱚᱠᱚᱭ ᱪᱟᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱤᱪᱟᱠᱟ ᱪᱤᱝ ᱟ ᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱛᱟ ᱴᱷᱮᱭ ᱢᱟᱝᱜᱟᱛᱟ ᱴᱷᱮᱭᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱝᱜᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱯᱟᱱᱥᱟᱣᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮᱵᱞᱩᱱ ᱠᱟᱢᱜ ᱱᱚᱝᱞᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱟᱨᱠᱚᱱ ᱴᱷᱮᱭᱜ ᱥᱮᱫᱤᱱ ᱴᱷᱮᱭᱜ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱛᱮᱭᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱩᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱡᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱝᱜᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱪᱩ ᱡᱟᱱᱴᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱨᱵᱨᱟᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨᱟᱢᱥᱤᱱ ᱞᱚᱱᱡᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱚᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱡᱟᱨᱵ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱪᱷᱟ ᱱᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱪᱷᱟ ᱱᱟᱫᱤ ᱟᱡᱤ ᱡᱟᱱᱴᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱪᱷᱟ ᱱᱟᱫᱤ ᱛᱟᱣᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱪᱷᱟ ᱱᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱚᱡᱤ ᱠᱚᱭᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱯᱟᱴᱟ ᱜᱚ ᱞᱚᱡᱤ ᱛᱟᱣ ᱟᱢ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱧᱩᱣᱟᱨᱟ ᱜᱤᱞᱚᱱ ᱵᱨᱤ ᱦᱮᱱ ᱜᱚ ᱞᱚᱡᱤ ᱛᱟᱣ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱯᱟᱥᱤᱠ ᱞᱚᱡᱤ ᱛᱟᱣ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱩ ᱜᱚ ᱠᱩᱱᱡᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱞᱮ ᱱᱚᱠᱛᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱱᱟ ᱱᱚᱠᱛᱮᱱ ᱛᱟᱣ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱪᱟᱛᱟ ᱪᱤᱢᱟᱝᱜᱟ
1: ᱟᱡᱤ
0: ᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱩ ᱪᱚᱢᱱᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱱ ᱜᱚ ᱪᱚᱢᱱᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚ ᱛᱟᱥᱴᱟᱝ ᱤᱨᱮ ᱨᱟᱯ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱚᱨ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱚᱨ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱵᱚ ᱛᱚᱝ ᱞᱩᱢ ᱵᱚ ᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱟᱝᱜᱚᱨ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱢᱱᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱢᱟᱝᱜᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱮ ᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱩᱢᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮᱥᱤᱵᱤ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱤ ᱪᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱩᱭᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞ ᱱᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱪᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱠᱚ
1: ᱫᱮᱝ ᱫᱮᱝ
0: ᱛᱟᱛᱮ ᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱢᱵᱤ ᱦᱚᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱪᱟᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱚ ᱠᱚᱱᱡᱟᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱨᱟ ᱛᱨᱟᱭᱟ ᱱᱚ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ
1: ᱪᱮᱠ ᱛᱟ
0: ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱥᱛᱤ ᱛᱚᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱡᱤᱨᱤᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱟᱥᱛᱤ ᱛᱚᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱠᱚᱣᱟᱴ ᱠᱚ ᱟᱭᱞᱟᱢ ᱛᱤᱠᱞᱚ ᱠᱷᱟᱱᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱚᱨᱥᱤ ᱜᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱫᱤᱨᱟ ᱢᱩᱨ ᱜᱨᱟ ᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚ ᱛᱚᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱫᱢᱩ ᱵᱤᱥᱤ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱦᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱤ ᱪᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱛᱤ ᱟᱱᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱤ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱟ ᱫᱮᱱ ᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱯᱮᱭᱟᱝ ᱤ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱤ ᱪᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱠᱚ ᱤ ᱪᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱪᱩ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱚ ᱠᱩᱪᱮᱱ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱜᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱜᱚᱱ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱢᱚᱨᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱚ ᱵᱤᱡᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱱ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱦᱟᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚ ᱚᱝᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱪᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱪᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱥᱩᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱮᱣᱨᱚᱠ ᱥᱚ ᱠᱚᱱ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱥᱚᱛᱨ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱫᱤ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱫᱮᱵ ᱛᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱠᱚ ᱛᱤᱞᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱱᱚ ᱵᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱨᱟ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱢ ᱤ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱠᱟᱥ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱩᱫᱚᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱦᱟᱨᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱟ ᱣᱟᱴ ᱫᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱠᱨᱚᱥᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱵᱚ ᱡᱤᱜᱟ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱤ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱨᱤᱝ ᱜᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱵᱤᱥᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜᱮ ᱜᱚᱥᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱚ ᱜᱚᱥᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱦᱤᱡᱚ ᱜᱚᱥᱟ ᱜᱮ ᱟᱱᱟᱞ ᱛᱮ ᱥᱚᱠᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱥᱟᱢ ᱠᱮ
0: ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱢ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱡᱟᱥᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱮ ᱛᱚ ᱢᱩᱥᱨᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱱᱚᱱᱛᱩᱢ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱ ᱮᱪᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱟ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱤᱪᱷᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱡᱚᱴᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱢᱤ ᱱᱚᱱᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱤᱪᱷᱟᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱤᱧᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱚ ᱢᱩᱥᱨᱤ ᱢᱚᱛᱟ ᱮᱪᱚ ᱛᱚᱦᱚ ᱤᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱠᱩᱯᱪᱮᱛ ᱱᱚᱛᱮ ᱤᱪᱷᱟᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱱᱚᱛᱮ ᱤᱪᱷᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱠᱮᱢᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱮᱢᱮᱱ ᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟ ᱢᱩᱥᱨᱤ Шудзохуа енжи сөзі домызы ваныр шимжик қанзыған. Тады чуға не түрі ба,